नारायणम्। ओम नमः श्री प्रभुदीपाय। श्री दीप नारायण भगवान की। देवादिदेव देवपुरी समादेव। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। अलकपुरी जी महादेव की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। भजन।

की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री शलपुर जी महाराज की जय। हिंदू धाम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय। सत्य सनातन दार

श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। श्री सत गुरुदेवा की जय।

बड़े सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री सिद्धिप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।

0: ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगिया जी महाराज की जय। श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You know to sing the bhajan?

0: की जय। हिमालयन सिद्धवता सियालक पुरी जी भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत्व गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: I'm not sure. I'm practicing. Okay. Okay. Make
2: but I wouldn't go.
1: You will. You. You need to sing. Okay. Then you sing.

अम्बले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।
1: Thank you.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय।
1: श्रीदेव पुरुष महादेव की जय, श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री सियाल पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरुदेव की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, विश्व गुरु श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

की जय, श्यालापुरी महादेवा की जय, श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेवा की जय, महामंडलेश्वर स्वामी लालानंद जी महाराज की जय, श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।

0: ओ भगवान महाप्रभु जी और गुरु, वी हैव योर ब्लेसिंग्स, योर विचारी हैं, सो वी आर इन दैट पाथ दैट वी आर विचारी हैं. आई एम जस्ट हम्बल.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

है व्यापक विश्व चराचर में हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है। निर्गुण से सगुण बन आए भक्तन के हितकारी है।

ही है। आप बिना कौन हमारे नाथ है, जिनको जाय पुकारी है। जहाँ देखूं जहाँ आप ही आप हो, नित्य चेतन निराकारी है। पापी अनेकों आगे उभारिया, अब के मेरी बारी है। मुझ पर

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वगुरु परमहंसी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě, jestli budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेवा की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद

जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. I can read it. Satan Guru Rakhmaj.

0: श्री प्राण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।
1: Adiós.

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: Vishvaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jai.

0: Két hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
1: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
0: Yoga és a védek tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
1: It is a science. It has been proved.
0: Ez egy bizonyított tudomány.
1: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
0: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
1: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
0: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
1: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
0: Ez a négy, az ahar, a táplálék.
1: Vihar, where you are going, with whom you are.
0: Vihar, hova mész, kivel vagy.
1: And what kind of behavior you are doing.
0: És hogyan viselkedsz.
1: How you are living with someone.
0: Hogyan élsz valakivel.
1: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
0: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
1: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
0: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
1: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
0: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza gondolataid.
1: You have to control your horse.
0: Uralnod kell lovaidat.
1: And we have 10 horses of our senses.
0: 10 ló van az érzékszerveknek.
1: And you have to control them.
0: Ezeket kell uralni.
1: Positively, not negatively.
0: Pozitívan, nem negatívan.
1: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
0: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
1: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
0: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
1: He studies Sanskrit.
0: Sanskritot tanult.
1: And he is one of the best in the karmakanda.
0: És ő az egyik legjobb a karmakandában.
1: Now, many you don't know what karmakanda.
0: És nem tudjátok, mi ez.
1: We know the karma.
0: Tudjuk, mi az, hogy karma.
1: But what is the kand?
0: És mi az, hogy kand?
1: Kand means disaster.
0: A kand az katasztrófa.
1: If you make karma and kand.
0: Hogyha a karmát és kandot végzel.
1: Or there are different chapters.
0: Vagy vannak fejezetek.
1: So there are many different things.
0: Különböző dolgok vannak.
1: So our acharya Triveda Kapila.
0: Acharya Triveda Kapila.
1: Is with us.
0: Itt van velünk.
1: And I think he should tell about something, the karmakand.
0: Elmondja, mi az a karmakand.
1: And the effect.
0: És annak hatásai.
1: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
0: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
1: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi. Panditji.
0: Köszöntelek benneteket és Kapil Trivedi Panditjit.
1: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
0: Panditji, tiéd.
1: Bolo.
0: So.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन. दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय. आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं. आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए, सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सबने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है, इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं,
1: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस। अनुवाद करता हूं। सो द पंडित जी सेठ,
0: पंडित जी आसमंता,
1: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव,
0: गुरु परंपरांक फेस्ट की तिस्तलेतेत,
1: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन,
0: ते मोंट हज मिंद आदोत्तक वजुंग,
1: दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर,
0: एजुट लेहतुंक इत,
1: एंड दैट वी आर हियर इन द शेल्टर ऑफ द गुरुदेव,
0: और गुरुदेव हालेकाबान लेहतुंक।
1: सेम टाइम दैट He mentioned about 8.4 million different kind of lives.
0: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
1: But finally we got a human life.
0: És annak a végén az emberit.
1: Human life should be very pure.
0: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
1: You have to come to the God as pure you were.
0: Tisztán kell jönni Istenhez.
1: So he said we are lucky.
0: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
1: And we are going to have some havan, yagya, puja.
0: Havanát, yagyát, pujját fogunk gyakorolni.
1: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं।
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे। यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं।
1: वाइल मेकिंग द यज्ञ
0: यज्ञ
1: सेरेमोनीज वी विल हैव ए इजी एक्सेस टू गॉड।
0: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है। अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं।
1: इन लाइफ मैनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन,
0: életben sokszor fe és lefelé szállunk,
1: देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, different kind of situations.
0: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
0: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान

0: ज्ञान है यज्ञ कुंड की, जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है। उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं।
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
2: टू द मैन
1: वैदिक साइंस
2: वैदिक उस टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I taught before, he mentioned.
2: A vastu shastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
1: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
2: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
1: And in the proper scale. East, west, north, south.
2: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
1: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
2: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
1: And what the mantras is coming like from that supreme.
2: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
1: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
2: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
0: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं, वो मंत्रों के अधीन हैं। मंत्र जो हैं, वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं। अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है, और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
1: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास which influences the devas.
2: Iratok, védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
1: Invite them.
2: Behívja őket.
1: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so called the pandit.
2: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
1: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
2: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
1: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
2: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
1: So this is not only just what we call a mantra chanting. It is the science, it is Sanatan.
2: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
1: It is eternal.
2: Örök.
1: Unchangeable.
2: Megváltoztathatatlan.
1: It is the truth.
2: Az igazság.
1: Is that scriptures?
2: Ez van az iratokban.
1: That granthas.
2: A grantákban.
0: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहां पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
1: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
2: Az már önmagában
1: it
2: nagy.
1: It is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
2: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
0: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
1: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
2: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
0: Dhyana moolam gurur murti, puja moolam guru padam, mantra moolam gurur vakyam, moksha moolam guru kripa. Dhyan karne ke yogya guru ji ki pratima hai, guru ji ki murti hai. Dhyana moolam gurur murti, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं. पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं. मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84,00,000 योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा. आप सब एक बार बोलिएगा सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिश्तनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स here in this hall and all dear bhaktas around the world who's with us through our webcast. Welcome. It's a beautiful day. It was the Mahashivaratri. Mahashivaratri ceremonies, pujas, and we have established here beautiful

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की जय। मीन्स ग्लोरी, जय मीन्स विक्टोरी, सो एंड जय मीन्स लॉन्ग लाइफ। सो वी ऑलवेज सेड द ग्लोरी विक्टोरी ऑफ गुरुदेव, विक्टोरी ऑफ द राइट हाउसनेस, द धर्मा, सनातन धर्मा।

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धुरनाशकाय हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा अदसाय यस्मृतपुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः यस्मृतपुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राणाक्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि ओम श्रीनारायण गंगे जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोष कारकम पावन यज्ञ हेतु पय स्नार्थम प्रतिगृहताम ओम इति पंचामृतमयानितम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम शर्करया स्नानार्थम प्रतिगृहताम हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पय स्नानार्थम प्रतिगृहताम पावन यज्ञ हेतु च पय स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम सदा शिवाय नमः, साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदा शिवाय नमो नमः, साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्प रेतु समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम इदिम मधु स्नानम करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतम मधुराम्ल शशि प्रवम दद्यानीतमयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृहताम ओदो सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः, साम सदा शिवाय नमः। हरि ओम। पंचामृतमयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम हरिः ओम। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलम सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः, श्री पशुपते नमः, श्री गंगाधराय नमः, जटाधराय नमः, ओम अष्टांगलिंगाय नमः, ओम सदाशिवाय नमो नमः, ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती पानी और ओके अब तिलक तिलक करना है भस्म का अच्छे से तिलक करके हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम आपदम हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदा शिवाय नमः, साम

सनाय भस्मांगराय महेश्वराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।

0: थोड़ा चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्य मे दक्षिणां समर्पयामि साम सदा शिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते नलक्ये वस्त्रं समर्पयामि श्रीनारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतुर को स्मरण करके। हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम्स चढ़ाइए। त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्यार हो गए 11 टाइम्स। अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को पचाए। Can you pass that thali to Swamiji?
1: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phalacharu bhakshanam umasutam soka vinashakarakam namami vigneshwara padapangajam siddhi buddhi saitaya sri gamganadhipataye namaha श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः।
0: सिंदूर भी लगा दीजिए।
1: सिंदूरम शोभदम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभदम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया पपादिते देतुभ्यं वासदि प्रतिगृहताम।
0: थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंद लगे थी बहुत।
1: हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः।
0: समवन कैन प्ले द बेल।
1: ओम सांब सदा शिवाय नमः
0: ना अगरबत्ती

0: भगवान
1: जय अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।

0: more water. Clean it.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए ओम पश्चिमाय नमः ओम उत्तराय नमः उत्तर दिशे नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम आग्नेय नमः ओम वायव्ये नमः ओम नैऋत्ये नमः सानाय नमः ओम भूतलाय नमः नीचे ओम आकाशाय नमः आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में नाउ फ्लावर वी नीड टू हैव फ्लावर
0: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन
1: एंड दैट इज ऑलरेडी हरि ओम ओम सूर्याय नमः ओम सोम सेता वाइट ओम चंद्राय नमः ओम भौमाय लाल रेड ओम भौमाय नमः भौमरिण ऑलराइट भौमाय नमः नाउ ग्रीन बुम बुदाय नमः ओम बुम बुदाय नमः ओ येलो ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः नाउ व्हाइट डायमंड कलर ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः नाउ ब्लैक सनी कलर ओम शमशनेश्वराय नमः शमशनेश्वराय नमः नाउ ब्लू ओ ये या ओम राम राहवे नमः ब्राउन Oh, maybe the one like pinky style. Yeah, you got it? Okay, yeah.
0: Where is the vokai? Where is the...
1: Basma?
0: Basma.
1: There is a small kotori. Where is that, Basma? Bas. Om kem ke dave namaha. Bas. Bas. Ab agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राणस मघ्रार अग्नि अजायत ओम अग्ने सानिल्य गोत्र ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारदग्नि अजायत बोले अग्नि देवता की जय नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री No. Different, separate. Yeah. Okay. Om Prajapataye Swaha. Om Agnaye Swaha. Good. Om Dhanantarave Swaha. Oh, now where is that long stick for the ghee? Oh, yeah, ghee ke liye. Sure. Om Prajapate Swaha.
0: Now this take it away.
1: Put it in your chest and when it says Swaha. Okay. जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे आए
0: रतन देवी सूरज देवी those who just came now put them till the gods from this here and where is this thali

ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते।

0: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा। ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु के दव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा। ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः। नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन ससत्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा। एहे ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा। पशुपत्ये नमः स्वाहा। अघोराय नमः स्वाहा। साम्ब सदाशिवाय नमः स्वाहा। चारवेदाय नमः स्वाहा। ऋग्वेदाय नमः स्वाहा। सामवेदाय नमः स्वाहा। यजुर्वेदाय नमः स्वाहा। अथर्ववेदाय नमः स्वाहा। अठारपुराणाय नमः स्वाहा। सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा। बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। केदारनाथाय नमः स्वाहा। ठाकुरपुरे नमः स्वाहा। सोमनाथाय नमः स्वाहा। अमरनाथाय नमः स्वाहा। नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द शिव।
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा। ओम

ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम प्रवराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वविख्याताय नमः ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा ओम सर्वकराय नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा ओम जटिने नमः स्वाहा ओम चर्मिणे नमः स्वाहा ओम शिखंडिने नमः स्वाहा ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः ओम हरिणाक्षाय नमः स्वाहा ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा ओम प्रभवे नमः स्वाहा ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा ओम निवित्ताय नमः स्वाहा ओम नियताय नमः स्वाहा ओम शाश्वताय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम खजराय नमः स्वाहा ओम गोचराय नमः स्वाहा ओम अर्दनाय नमः स्वाहा अभिवाद्याय नमः स्वाहा महाकर्मणे नमः स्वाहा तपस्विने नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा उन्मत्तवेशप्रच्छन्नाय नमः स्वाहा ओम सर्वलोकप्रजापतये नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा महायशे नमः स्वाहा महात्मने नमः स्वाहा सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा विश्वरूपाय नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा ओम लोकपालाय नमः स्वाहा ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा ओम प्रसादाय ओम हृगर्भये नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओ नियमाय नमः स्वाहा नियमाश्रिताय नमः स्वाहा ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा ओम आदये नमः स्वाहा ओम आदिकराय नमः स्वाहा ओम निधये नमः स्वाहा ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा विशालाक्षाय नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम शनये नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ग्रहाय नमः स्वाहा ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा ओम वराय नमः स्वाहा ओम अत्रये नमः स्वाहा अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम घोर तपसे नमः स्वाहा ओम अदीनाय नमः स्वाहा ओम दीनसाधकाय नमः स्वाहा सम्मत सरकाराय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम प्रमाणाय नमः स्वाहा ओम परमात तपसे नमः स्वाहा ओम योगिने नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा महाबीजाय नमः स्वाहा महारेतसे नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा दिग्वाससे नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा परमाय मंत्राय नमः स्वाहा सर्वभावकराय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा ओम धनुन्ये नमः स्वाहा ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा ओम कपालवते नमः स्वाहा ओम असनये नमः स्वाहा शतघ्रिने नमः स्वाहा ओम खंगिने नमः स्वाहा पट्टिसिने नमः स्वाहा आयुधिने नमः स्वाहा महते नमः स्वाहा सुवस्ताय नमः स्वाहा सुरूपाय नमः स्वाहा ओम तेजसे नमः ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा उष्णीषिणे नमः स्वाहा शुभक्राय नमः स्वाहा उद्ग्राय नमः स्वाहा ओम विनताय नमः स्वाहा ओम दीर्घाय नमः
स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा। सुतीर्थाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम मुंडाय नमः। ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा। ओम गंधधारिणे नमः स्वाहा। ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा। ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा। ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा। ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा। नभस्थलाय नमः स्वाहा। त्रिजटिने नमः स्वाहा। चिरवाससे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम सेनापतये नमः। ओम विभवे नमः। ओम अहस्वराय नमः। ओम नक्तस्वराय नमः स्वाहा। ओम तिन्मगये नमः स्वाहा। ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा। शुभचर्षाय नमः स्वाहा। ओ गजग्ने नमः स्वाहा। ओम पाणिने नमः स्वाहा। ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा। ओम गुणकाराय नमः स्वाहा। सिंहादूलरूपाय नमः स्वाहा। आर्धचम्बावरावृत्ताय नमः स्वाहा। कालयोगिने नमः स्वाहा। महानादाय नमः स्वाहा। ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा। ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा। ओम निशाचराय नमः।

0: ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा, धरो दत्ताय नमः स्वाहा, लोहिताक्षाय नमः स्वाहा, ओमाक्षाय नमः स्वाहा, ओम कर्त्रे नमः, ओम सर्वपरिचरनिशाय नमः स्वाहा, सर्वपरिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा, मुख्याय नमः स्वाहा, अमुख्याय नमः स्वाहा, ओम देहाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, सर्वकामदाय नमः स्वाहा, सर्वकालप्रसादाय नमः स्वाहा, ओम सुबलासाय नमः स्वाहा, ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा, सर्वकामवराय नमः स्वाहा, ओम सर्वकाय नमः स्वाहा, सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा, आकाशनिवेशाय नमः स्वाहा, निपातिने नमः स्वाहा, अवसाय नमः स्वाहा, ओम खगाय नमः स्वाहा, ओम रौद्ररूपाय नमः स्वाहा, अंशवे नमः स्वाहा, आदित्याय नमः स्वाहा, बहुरश्मे नमः स्वाहा, ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा, ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा, महावेगाय नमः स्वाहा, मनोवेगाय नमः स्वाहा, निशाचराय नमः स्वाहा, सर्ववासिने नमः स्वाहा, श्रेयवासिने नमः स्वाहा, उपदेशकराय नमः स्वाहा, ओम अकराय नमः स्वाहा, ओम मुनये नमः स्वाहा, आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा, ओम संभवाय नमः स्वाहा, संमग्नाय नमः स्वाहा, सहस्रदाय नमः स्वाहा, ओम पक्षिणे नमः स्वाहा, ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा, अधिशिप्ताय नमः स्वाहा, विषामतमये नमः स्वाहा, ओम उन्मादाय नमः स्वाहा, ओम मदनाय नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा, ओम असस्ताय नमः स्वाहा, ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा, ओम असये नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामाय नमः स्वाहा, ओम प्राचे नमः, ओम स्वाहा, ओम दक्षिणाय नमः, ओम स्वाहा, ओम वामनाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धयोगिने नमः स्वाहा, ओम महर्षये नमः स्वाहा, ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा, भिक्षवे नमः स्वाहा, भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा, विपणाय नमः स्वाहा, मृदवे नमः स्वाहा, अभयनाय नमः स्वाहा, विशाखाय नमः स्वाहा, षष्ठीभागाय नमः स्वाहा, ओम गवापतये नमः स्वाहा, वज्रहस्ताय नमः स्वाहा, ओम पिनाकाय नमः स्वाहा, सदाशिवाय नमः स्वाहा। नाउ इन 360
1: हो
0: गया, जस्ट वी फिनिश, ये 700, सो दिस इज गुड मेडिटेशन, कीप कंटिन्यूइंग मेडिटेशन कलि युग। ओम विस्कम्बिने नमः स्वाहा, चमुस्तमनाय नमः स्वाहा, वृत्तवित्तकराय नमः स्वाहा, तालाय नमः स्वाहा, मदवे नमः स्वाहा, मधुकुलोचनाय नमः स्वाहा, वाचस्पताय नमः स्वाहा, वाजस्यनाय नमः स्वाहा, नित्यमाश्रित पूजिताय नमः स्वाहा, ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा, लोकचारिणे नमः स्वाहा, सर्वचारिणे नमः स्वाहा, विचारविदे नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, निशाचरिणे नमः स्वाहा, पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा, ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा, ओम निमित्ताय नमः स्वाहा, ओम नंदये नमः स्वाहा, ओम नंदीकराय नमः स्वाहा, ओम हरये नमः स्वाहा, ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा, ओम नंदिने नमः स्वाहा, ओम नंदाय नमः स्वाहा, नंदीगवर्धनाय नमः स्वाहा, ओम भागहरिणे नमः स्वाहा, नियश्रे नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, पितामहाय नमः स्वाहा, चतुर्मुखाय नमः स्वाहा, ओम महालिंगाय नमः स्वाहा, ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा, ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा, ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा, ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा, युगवहाय नमः स्वाहा, बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा, बीजकर्ते नमः स्वाहा, अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा, बलाय नमः स्वाहा, इतिहासाय नमः स्वाहा, सकल्पाय नमः स्वाहा, गौतमाय नमः स्वाहा, निशकराय नमः स्वाहा, दम्भाय नमः स्वाहा, ओम अम्बाय नमः स्वाहा, ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा, ओम वैश्याय नमः स्वाहा, वसकराय नमः स्वाहा, कलये नमः स्वाहा, ओम लोकर्ते नमः स्वाहा, ओम पशुपतये नमः स्वाहा, ओम महाकर्ते नमः स्वाहा, ओम अनौषधाय नमः स्वाहा, ओम अक्षराय नमः स्वाहा, ओम परमाय नमः स्वाहा, ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा, ओम बलवते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम नित्यै नमः, ओम अनित्यै नमः, ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा, ओम शुद्धाय नमः स्वाहा, ओम मान्याय नमः स्वाहा, ओम गतागताय नमः स्वाहा, ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा, ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा, ओम दर्पणाय नमः स्वाहा, ओम अमित्रजिते नमः

0: स्वाहा उम्मीदकाराय नमः, स्वाहा उमंसकाराय नमः, स्वाहा उम्मीदिसे नमः, स्वाहा ओ समरदर्दनाय नमः, स्वाहा महाभिनिशाय नमः, स्वाहा महागोराय नमः, स्वाहा वसिने नमः, स्वाहा ओमकराय नमः, स्वाहा अमनिज्वलाय नमः, स्वाहा महाज्वलाय नमः, स्वाहा ओम आदि विदुम्नाय नमः, स्वाहा ओमहुताय नमः, स्वाहा ओमविषे नमः, स्वाहा विषाय नमः, स्वाहा शंकराय नमः, ओम नित्यवर्षिने सो नमः, ओ धूम्रकेताय नमः, स्वाहा ओम नीलपराय नमः, स्वाहा आंगुलद्याय नमः, स्वाहा ओम शोभनाय नमः, स्वाहा ओम निवर्गाय नमः, स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः। गीत है नमः, ओम स्वति भावाय नमः, ओम भागिने नमः, ओम भागकराय नमः, स्वाहा ओम लघवे नमः, स्वाहा उत्सन्नाय नमः, स्वाहा महंकराय नमः, स्वाहा महागरपराय नमः, स्वाहा कृष्णवर्चाय नमः, स्वाहा सुवर्णाय नमः, स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः, स्वाहा ओम महापादकाय नमः, स्वाहा महास्ताय नमः, स्वाहा महाकायाय नमः, स्वाहा महायशसे नमः, स्वाहा महाग्रभूमि नमः, स्वाहा महामात्राय नमः, स्वाहा महानेत्र्याय नमः, स्वाहा निशालाय नमः, स्वाहा महाकांताय नमः, स्वाहा महाकर्णाय नमः, स्वाहा महेष्टाय नमः, स्वाहा हणवे नमः, स्वाहा महाहणवे नमः, स्वाहा महानसाय नमः, स्वाहा महागम्पवे नमः, स्वाहा महागविषाय नमः, स्मरसानभाजे नमः, महाभक्षे नमः, ओम महेश्वराय नमः, स्वाहा मरुरसकाय नमः, स्वाहा अंतरात्मने नमः, स्वाहा मृगालाय नमः, स्वाहा ओम लंबानाय नमः, स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः, स्वाहा महामायाय नमः, स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानीये नमः, स्वाहा पयोनिधये नमः, स्वाहा महादंताय नमः, स्वाहा महाद्रष्टाय नमः, स्वाहा महाजिह्वाय नमः, स्वाहा ओम महामुखाय नमः, स्वाहा महानखाय नमः, स्वाहा महासुराय नमः, स्वाहा महाकोशाय नमः, स्वाहा महाजटाय नमः, स्वाहा प्रसन्नाय नमः, स्वाहा ओम प्रसादाय नमः, स्वाहा प्रपत्याय नमः, स्वाहा गिरिसादनाय नमः, स्वाहा स्नेहाय नमः, स्वाहा ओम अहस्रयाय नमः, स्वाहा ओम अजिताय नमः, स्वाहा महामुनये नमः, स्वाहा वृक्षकाराय नमः, स्वाहा वृक्षकेतवे नमः, स्वाहा अनलाय नमः, स्वाहा बाह्यबायनाय नमः, स्वाहा गंडलिने नमः, स्वाहा मेरुदाग्ने नमः, स्वाहा मेरुधाम्ने नमः, स्वाहा देवादी नमः, स्वाहा देवाधिपतये नमः, स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः, स्वाहा सामवर्षीयाय नमः, स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः, स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः, स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः, स्वाहा ओम गुह्याय नमः, स्वाहा प्रकाशाय नमः, स्वाहा जंगमाय नमः, स्वाहा अमोघराय नमः, स्वाहा प्रसादाय नमः, स्वाहा अभिज्ञाय नमः, स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः, स्वाहा ओमकराय नमः, स्वाहा ओम प्रियाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा कनकाय नमः, स्वाहा कंचन छवये नमः, स्वाहा ओम नाभये नमः, स्वाहा नंदिकाराय नमः, स्वाहा ओम भावाय नमः, स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः, स्वाहा ओम स्थिराय नमः, स्वाहा द्वादशाय नमः, स्वाहा ओम त्रासनाय नमः, स्वाहा ओम आद्याय नमः, स्वाहा ओम यज्ञाय नमः, स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः, स्वाहा नक्तम नमः, ओम कलये नमः, स्वाहा ओम कालाय नमः, स्वाहा ओम मकराय नमः, स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः, स्वाहा ओम सगणाय नमः, स्वाहा ओम गुणकराय नमः, स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः, स्वाहा ओम भस्माय नमः, स्वाहा भस्मधाराय नमः, स्वाहा भस्मगोतने नमः, स्वाहा भस्मशयाय नमः, स्वाहा भस्मगोतने नमः, स्वाहा भस्मभूताय नमः, स्वाहा ओम तरवे नमः, स्वाहा ओम गणाय नमः, स्वाहा लोकपालाय नमः, स्वाहा अलोकाय नमः, स्वाहा अमात्मने नमः, स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः, स्वाहा ओम शुक्लाय नमः, स्वाहा त्रिशुकाय नमः, स्वाहा संपन्नाय नमः, स्वाहा अशुचाय नमः, स्वाहा भूत निविशिताय नमः, स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः, स्वाहा क्रियावस्थाय नमः, स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः, ओम ओम बराय नमः, स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः, स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः, स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके need rice more
0: hari om om ambu jalaaya namaha swaha sunishchalaaya namaha swaha kapilaaya namaha swaha kapisaaya namaha swaha shuklaaya namaha swaha ayushe namaha स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्य नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः

0: स्वाहा सुबंध बीजाय नमः, स्वाहा सय सार्गे नमः, स्वाहा सय ज्ञानरथे नमः, स्वाहा सकारमानाय नमः, स्वाहा महाद्रश्याय नमः, स्वाहा मायायुधाय नमः, स्वाहा बहुधानिन्थ्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा ओम शंकराय नमः, स्वाहा ओम अगनाय नमः, स्वाहा ओम अमरेशाय नमः, स्वाहा ओम महादेवाय नमः, स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः, स्वाहा ओ सुराग्रीणे नमः, स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः, स्वाहा अनिलाभाय नमः, स्वाहा शेखितानाय नमः, स्वाहा हविषे नमः, ओम अजय पातके नमः, स्वाहा अजय कपाते नमः, स्वाहा ओम कापिले नमः, स्वाहा तिसंके नमः, स्वाहा अजिताय नमः, स्वाहा ओम शिवाय नमः, स्वाहा ओम धनंतरे नमः, स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः, स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः, स्वाहा वैष्णवाय नमः, स्वाहा ओम धात्रे नमः, स्वाहा ओम शुक्राय नमः, स्वाहा ओम विष्णवे नमः, स्वाहा ओम मित्राय नमः, स्वाहा ओ तोष्ट्रे नमः, स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः, स्वाहा ओम धराय नमः, स्वाहा ओम प्रभवाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः, स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः, स्वाहा अर्थमे नमः, स्वाहा सवित्रे नमः, स्वाहा ओम रवये नमः, स्वाहा ओ संगे नमः, स्वाहा विधात्रे नमः, स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः, स्वाहा भूतभावनाय नमः, स्वाहा ओम विभवे नमः, स्वाहा ओम बणभिवायिने नमः, स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः, स्वाहा सर्वकामगुणवहाय नमः, स्वाहा पद्मनाभाय नमः, स्वाहा महागर्भाय नमः, स्वाहा चंद्रवस्त्राय नमः, स्वाहा अनिलाय नमः, स्वाहा अनलाय नमः, स्वाहा बलवते नमः, स्वाहा उपशांताय नमः, स्वाहा पुराणाय नमः, स्वाहा पुण्यसंचने नमः, स्वाहा ओम ए नाम, स्वाहा कुरुकत्रे नमः, स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः, स्वाहा कुरुभूताय नमः, स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः, स्वाहा ओम सर्वासाय नमः, स्वाहा धर्मचारिणी नमः, स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः, स्वाहा ओम देवादेवाय नमः, सुमुख शक्ताय नमः, स्वाहा ओम सते नमः, स्वाहा ओम असते नमः, स्वाहा ओम सर्वरत्नवेद नमः, स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः, स्वाहा हिमविद्निसंस्थाय नमः, स्वाहा हिमबद्धिसहस्रसाय नमः, स्वाहा ओम कुलहरिणे नमः, स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः, स्वाहा ओम बहुविद्याय नमः, स्वाहा ओम बहुप्रदाय नमः, स्वाहा ओम वाणिज्याय नमः, स्वाहा ओम वरदकिने नमः, स्वाहा ओम वृक्षाय नमः, स्वाहा ओम वकिलाय नमः, स्वाहा ओम चंदनाय नमः, स्वाहा ओम छदाय नमः, स्वाहा ओम अलोलाय नमः, स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः, स्वाहा ओम महाजत्रे नमः, स्वाहा ओम अलोचाय नमः, स्वाहा महासौदाय नमः, स्वाहा सिद्धकारिणे नमः, स्वाहा ओम छदाय नमः, स्वाहा ओम चंदनाय नमः, स्वाहा ओम वृक्षाय नमः, स्वाहा वरदकिने नमः, स्वाहा वाणिज्याय नमः, स्वाहा वकिलाय नमः, स्वाहा बहुप्रदाय नमः, स्वाहा बहुविद्याय नमः, स्वाहा सिद्धार्थकारिणे नमः, स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः, स्वाहा सिंहनादनाय नमः, स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः, स्वाहा सिंहगाय नमः, स्वाहा सिंहवाहनाय नमः, स्वाहा प्रभात्मने नमः, स्वाहा जगत्कालस्थनाय नमः, स्वाहा लोकहिताय नमः, स्वाहा अमतरवे नमः, स्वाहा सारंजाय नमः, स्वाहा नवचक्रांगाय नमः, स्वाहा अमकेतुमालिने नमः, स्वाहा सवानाय नमः, स्वाहा भूतालयाय नमः, स्वाहा भूतपतये नमः, स्वाहा अहोरात्राय नमः, स्वाहा अग्निदिताय नमः, स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रे नमः, स्वाहा अनिलाय नमः, स्वाहा विभवे नमः, स्वाहा भवनाय नमः, स्वाहा अमोघाय नमः, स्वाहा संगताय नमः, स्वाहा अश्वाय नमः, स्वाहा भोजनाय नमः, स्वाहा प्राणधाराय नमः, स्वाहा घृतमिदे नमः, स्वाहा अमिताय नमः, स्वाहा दक्षाय नमः, स्वाहा सत्कृताय नमः, स्वाहा युगधापिताय नमः, स्वाहा गोपालाय नमः, स्वाहा गोपतये नमः, ओम गामाय नमः, स्वाहा गोमवर्चनाय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः, स्वाहा प्रवेशिनाय नमः, स्वाहा गुहालपालाय नमः, स्वाहा प्रकिष्टारे नमः, स्वाहा महर्षाय नमः, स्वाहा जितकामाय नमः, स्वाहा जितेन्द्राय नमः, स्वाहा ओम गंधधराय नमः, स्वाहा उषताय नमः, स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड

तपस्य शक्ताय नमः स्वाहा ओमरतय नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सर गण वेत्य शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा ओम तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम वृद्धाय नमः स्वाहा अतिवृद्धाय नमः स्वाहा ओम अतिवृद्धाय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा दिवि सुपर्णे नमः स्वाहा आषाढ़ाय नमः स्वाहा ओम सुपर्षाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणिये नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजयाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंचाय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशलाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम युगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हर सुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अवृतलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओम शंकाय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकृणवणाय नमः स्वाहा अरिहच्छाय नमः ओम कुम्भाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा।

0: ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मवेदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गताये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलाय नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधने नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्नमः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा सारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्य नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शुंगुपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओ शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मात्रेभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओ वणशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओ पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्त्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रासान्य प्रवाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा शिवनाय नमः, स्वाहा ओम कांताय नमः, ओम निजाय सर्गाय नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा सर्व पावनाय नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः, स्वाहा प्रभुजे नमः, स्वाहा राज राजाय नमः, स्वाहा निराजायाय नमः, स्वाहा अभिराय नमः, स्वाहा अभिरामाय नमः, स्वाहा सुरगणाय नमः, स्वाहा विरामाय नमः, स्वाहा सर्वसाधनाय नमः, स्वाहा ललाटाक्षराय नमः, स्वाहा विश्वदेवाय नमः, स्वाहा हरिणाय नमः, स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः, स्वाहा स्थावरणाम नमः, स्वाहा स्थानपतये नमः, स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः, स्वाहा नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः, स्वाहा सिद्धार्थाय नमः, स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः, स्वाहा अंचित्याय नमः, स्वाहा सत्यव्रताय नमः, स्वाहा शुचये नमः, स्वाहा व्रताधिपाय नमः, स्वाहा ओम परस्परे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः, स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः, स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः, स्वाहा ओम श्रीमते नमः, स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः, स्वाहा ओम जगतपतये नमः, स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावले शिवार्पणम् स्वाहा। हर हर महादेव। शिव जी के 11
1: 1008
0: names। तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं। बच्चा है, बच्चा, वेट वेट है। So 11 times everyone chant Om Namah Shivaya Swaha together. Okay. Om Namah

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावती देंगे कंप्लीटली। नाउ वी एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, ये है और नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। ये यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। व्हाट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि, सहोसि सहमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गुं शांति हस्ते शांति राप शांति रो सधय शांति वनस्पताय शांति विश्वर्दे।

0: शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरिओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरिओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ, टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक। ओके
0: वी पुट लिटिल घी।

intellect. But the intellect, बुद्धि जो है, बुद्धि को ज्ञान विद्या चाहिए. बुद्धि को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get, like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he get the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is a very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान में उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तेरा मामा रिबू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है कि हमारी बेटी है, तीसरे कहता हमारी बहन है, और दूसरा कहता हमारी बुआ है, दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है, काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, विच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about the God.

for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है, नहीं बाप जी हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खा डरे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिरे कौन मन झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आथारी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है? तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परिजाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी, के रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन केवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी के रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। Anyhow, sorry that I have to speak between in Hindi and Sanskrit. I don't know, so I have to speak a little bit English because all of you. But I'm telling these Indians, they should learn their mother tongue, and then after they should.

एंड भजन के बाद में आनंद और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणेश जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. पर माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा. अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए. और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग. विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड. इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स वेन एवर यू लाइक. यू कैन पुट ऑन योर television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma Ki Jai, Sat Guru Dev Ki Jai.

0: but also for many villages in this thirsty region. Now in the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धो के अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो गौ सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day there was the festival of the Dawn of Consciousness, the Light of Consciousness Festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.